0: रेडियो एनआरएन 99.1
1: क्लासिक टेक को वाईफाई 6 राउटर नाम एक घाम एक शक्तिशाली 4 एंटीना में वाइड कवरेज 5G स्ट्रेंथ लो लेटेंसी र फास्ट स्पीड सब अस्त्र को शक्ति बोकेको 200 Mbps को इंटरनेट अब 3 महीना का लागि मात्र 3300 रुपया में साथ में IPTV मात्र 250 प्रति महीना बुकिंग को लागि 9800100 4477 शर्तहरू लागू हुनेछन् क्लासिक टेक छोयो कि छोयो

0: रहना तो पहले कसूर है चाहे पर डन।
1: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ट्ज तपाई हाम्रो अटुट साइनो।

0: Spotify, iMac, Sunday, Mucha, Radio Cyber, 89.1 MHz.
1: रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्ज तपाईं हाम्रो अति साइनो
2: बीबी स्टेशन नो प्रोग्राम फर दिस चैनल एट प्रेजेंट डिटेल्स अफ आवर
3: साइनो समय सूचक अहिले रातिको 9 बजे 9 पीएम
0: सफाई अनि सन्डे